0: कार्यक्रम कृषि का कुरा
1: व्यावसायिक कृषि प्रवर्धन का लागि सचेतनामूलक रेडियो कार्यक्रम
0: रेडियो मर्स्याङ्दी 95 मेगाहर्ज र कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङको सहकार्य
1: कार्यक्रम कृषि का कुरा

सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: तपाईं रेडियो मर्सेङ्गी एफएम